ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उदे बाद आप जी वाल लावांगा, आप जी दियां कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा

घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत

0: ये घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार कर।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा

जी मित्रों प्यारे हो, थैंक यू सो मच। थोड़ी आवाज जा रही है, इन्हें ठीक कर दे। जी। दोस्तों सत श्री अकाल, अगेन शुक्रिया, नमस्ते, अदाब। तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज, कुछ प्यारे प्यारे अज मैं मसदीक साहब दे गाने सुने हैं। थैंक यू सो मच, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आवाज तो ज्यादा कर रही है जी, ओ ठीक कर ली है। हेलो हेलो हेलो, यस हूँ ठीक है।

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

में हुलर में मेले में अकेले तेरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना मैं जब यमला पगला दीवाना हो रब्बा।

किसी उम्र में वो जान तो लगा तीना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना मैं जस यमला पगला दीवाना।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 855

के छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उत्ते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज़।

0: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना तुहाडे नाल पेश करदा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं दीआं कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा
1: मठा जिहा चलदा व्यापार, परेशान ना हो मेरे यार, कारोबार फड़ेगा ए रफ्तार, प्रवास रेडियो ते कर प्रचार। जी हाँ, अपने कारोबार नू दुनिया भर च प्रचारण लई प्रवास रेडियो ते इश्तिहार दियो। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो फोन नंबर 9 1 7 3 5 1 9।

खेत बोलन रे आप दे दिलां ते राज करना ये है जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन Expose yourself and you see this wonderful world with your walking eyes and experience. We are only

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: हेलो
1: बबी जी, मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन दिया कोई। मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर।
0: हेलो जी
1: बबी हेलो जी हे कि हेलो बबी जी सुन रहे हो मेनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना वो मुकेश पगलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप स्विच तो मैं उन्नी देर गाना ला गाना ला बबी जी सुन रहे हो मेनू।

मेले में अकेले फिरी बाजार घर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं क्या यमला पगला दीवाना।

फूल फके घूंघट में मुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं कहती यमला अगला दीवाना हो रहा।

सो दोस्तों मैं माफी चाहना हां कि साडी गलबात बबी जी उन्हां नाल नहीं हो सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम करके मेरे वाल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं कोई आई उन्हां दी कॉल जिहड़ी सी वह कुछ सैकंड विच ही बंद हो जाती सी उधर कोई टेक्निकल भाई चलो एनी हाउ हो सकता मैं अपनी गलबात चालू रखदा ना गाना भी कोई ना कोई एंटरटेनमेंट भी करता रहा अपना टाइम मैं पूरा करदा मैं दोस्तों गलबात कर रहा भारतीयां दे पखंड पुणे ते एक्टर पुणे ते अपने समाज का जिहड़ा दुखांत है जिहड़ा जिहड़ा रूप सानू पसंद नहीं उहदे उत्ते मेरी गलबात चल रही सी ते उहनूं ही मैं थोड़ा जिहा अगे वधाउणा जिहड़े मेरे 15-20 मिनट रह गए ने मैं अर्ज कर लिया सी कि साडा ना जिहड़ा मतलब कि पुलिस वालियां तो गल मेरे खत्म कीती सी कि देखो पुलिस साडी जिहड़ी पुलिस है असी कोई क्राइम करदे आ जां भारतीय नागरिक कोई भी कोई क्राइम करदा है ते उहदी सजा उहनूं मिलनी चाहीदी है जुर्माना उहनूं होना चाहीदा है पर साडे जिहड़े अधिकारी ने पुलिस अधिकारी वह बहुत गंदियां गालां मावां भैणां दीआं कढ़दे ने बाजार दे विच लागों दी लेडीज भी लंघ रहीआं हुंदीआं ने बेशर्मी दे तरीके दे नाल इह पुलिस दा किहड़ा स्टाइल है डिसिपलिन दा किहड़ा तरीका है इह ते बदतमीजी दी इंतहा है कि असीं जिहदे कोई कानून भंग होया वह भैण या मां का की कसूर है उहदे विच जिहनूं इह गाला कढ रहा है इहदे मोढ़े ते सार लगे इहनूं शर्म आउणी चाहीदी है कढ़नी क्यों लिया गाला उहदे नाल सिद्धी गलबात जुर्माना करो जिहड़ा उहदा हुंदा वह कानूनी कार्रवाई करो जिहड़ी उहदे नाल हो रही है इह शर्म वाली गल है नंबर दो दे उत्ते जिस तरह मैं हुण गल इस तरह कि साडा जिहड़ा सिस्टम है ना वह है ही इदां दा साहित दे केंद्र गवारां दे हथ विच राजनीति बदकारां दे हथ विच जख्म सीने तलवारां दे हथ विच सोने दा कम लोहारां दे हथ विच महान भारत दी महिमा वेखो राष्ट्री मुद्दे गदारां दे हथ सब काम पुठे कोई एक अद्धा ठीक भी कोई अचंगे अफसर भी है ने मैं ये नहीं कह दिया कि ए तो लैके जेड तक ही है पर 80-90-99% ठग चोर उचके उच्चिया पोस्टा ते बैठे ते जेड़े वधिया जेंटल एजुकेटेड लोग उच्चिया पोस्टा तक पहुंचे सन वह माहौल वेख के भी उन्हां वर्गे बन गए जे मी पै रहा तो तुहानूं भी छतरी लैनी पवेगी बाहर जाण वास्ते शायद वह भी इना लवेख के इना वर्गे हो गए ने हुण धार्मिकता की गल होण डई सी हर पिंड विच दो दो तीन तीन गुरद्वारे दे मंदर ने हर महल्ले च गुरद्वारा है एवं लगता है असी धर्म नूं बड़े ही समर्पित लोग पिंड पिंड पिंड दे विच मतलब कि एक ना टुटा जिहा स्कूल होएगा उहदे कमरे चोंदे ने दो चार महीने तो उहदा नलका खराब है एवें 200-300 रुपया नलके ते लगना पिंड विचों जां पिंड दी पंचायत चों उच्चियां पोस्टां ते बैठे ने ते जिहड़े वधिया जेंटल एजुकेटेड लोग उच्चिया पोस्टा तक पहुंचे सन वह माहौल वेख के भी उन्हां वर्गे बन गए जे मी पै रहा तो तुहानूं भी छतरी लैनी पवेगी बाहर जाण वास्ते शायद वह भी इना लवेख के इना वर्गे हो गए ने हुण धार्मिकता की गल होण डई सी हर पिंड विच दो दो तीन तीन गुरद्वारे दे मंदर ने हर महल्ले च गुरद्वारा है एवं लगता है असी धर्म नूं बड़े ही समर्पित लोग
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਐਵੇਂ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਨਲਕੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਨਲਕਾ ਹੀ ਠੀਕ।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक गीत जिहड़ा ए मैं आप जी दी नजर कर दी है विशेष करके।
0: थैंक यू जी।
1: जिहड़ा हुण मैं सुनाउण लगी
0: हां जी।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तो

रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोतियो, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते प्रार्थना भाव दियां खुशबुआं खिलारदा। वाह वाह आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा। आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनों दिलां ते दस्तक देण वाला, तुहाडे दिलां दी धड़कन वधाउण वाला, पाछदे मसले लियाउण वाला, पंजाब दी सैर करवाउण वाला, भाव दियां खुशबुआं खिलारदा। वाह वाह आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा। आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनों दिलां ते दस्तक देण वाला, तुहाडे दिलां दी धड़कन वधाउण वाला, पाछदे मसले लियाउण वाला, पंजाब दी सैर करवाउण वाला, हक सच दे ढोल वजा